आनंद, ओ तेरी टेक जपो गुरमंत, तेरी टेक तरिए भव सागर, राखण हार पूरा सुख सागर।

किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा, किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया, किन्हीं मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

पंडित सा सत सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तरभव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी पर त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे

0: तब गुरु
1: बिजे पूर्व देवना किस दी वस्त तिसे घर आवे बैठा सोधी पातशाह
0: रामदास सतगुरु
1: जंको मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग कबहू को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जंको शिव मुन गहना तजात कबिलास को
0: जंको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तप
1: जटा जूट पेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी से निवाजी सत्संग जीओ राग श्री राग ताड़ी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसन असं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसन पा कहने सारे गामा पा पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाव है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इसनु असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इसनु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ए ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ दी धर्म धृग तांग दागड़ दी दिम दिरना, बागड़ दी ब्रिते बांग तागड़ दी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। ये साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानिया और ताना लगानी कुम किरना नाल दे ताल दागड़ दी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल के अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इसनू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ वो कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वो राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वो कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे डागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं सतगुरु।

परमात्मा अपनी सेवक की प्रतिपालना किवें करदा। जट अगल में जन आप उधारे, कर अपने दे रख है हाथ, अपना हाथ दे के रख लेंदा, सिख नू कढ लेंदा। किवें?

0: परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत सारे भैणा वीर गज बज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भैणा वालों आवाज नहीं आई, विसाखी का पवित्र दिन है, प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। जिहड़ा जन्म हुंदा उहदी मौत अवश्य है, पर कलगी वाले पातशाह कहिंदे ने कि प्रगटो, जिहड़ा प्रगट हुंदा उहदी मौत नहीं। प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिले, एक बार सारे भैणा वीर गज वज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 15 मिनटां विच सिर्फ नमूने के मुताबिक, क्योंकि जो ढाडी है इन्हों का संबंध जिहड़ा है विसाखी के नाल। छेवें पातशाह ने यह ढाडी पैदा कीते ते सिख इतिहास नूं संभालण लई, सूरमिया ते योध्यां दा इतिहास संभालण लई ढाडियां दा कम वार गाउणी। आ वेखो 80,000 दा इकट्ठ है, 1699 दी विसाखी है। संगतां अपना दसवंध लै के दुनिया भर दे विचों पावन धरती आनंदपुर साहिब पहुंचे होए ने। 80,000 दे इकट्ठ विच कलगी वाले पातशाह ने कृपान धोई, और कृपान जो गुरु के सिख लेके खड़े, और मंग की कि एक सिर की लोड़ है। बड़े बड़े सिर झुक गए, नीवियां पा लिया ने, और कलगी वाले पातशाह ने आख्या कि फिर आख्या एक सिर की लोड़ है। जदों तीजी वेर आख्या एक गभरू उठे, जेदी 30 साल की उम्र है, जेदा ना है भाई दया राम, और जेदे माता का ना शोभा देई और पिता का नाम मैया राम। और उठ के कलगी वाले पातशाह के चरणा विच आके कह लगा, पातशाह लेट होण दा कारण डर नहीं, मैं जो लेट उठिया मेरे अंदर 605 सी कि एक वेर चीज अर्पण की, दोबारा भी अर्पण की जा सकती है। कह लगा जदों 13 साल की उम्र विच मैं अपने पिता मैया राम के नाल तुहाडे दर ते आया सां, जदों आ सिर झुकाया तुहाडे चरणा विच सिर ते उदों दे दिता। कलगी वाले पातशाह ने कृपान अगे की कि गबरुआ आ कृपान फड़ के लड़ सकते। कहन लगा काम हमारा तोले तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कलगी वाले पातशाह अंदर ले गए ने और सहमे हुए सिर देख रहे ने। उदू बाद दूजी वेर आए ते दूजी वेर सरदार धर्मचंद जी उठे, पिता का नाम, माता का नाम अनंती, पिता का नाम परम सुख, और जदों उठिया इनू भी लै गए।
1: बड़ा प्रसिद्ध मनोहर अते सरल राग है। इस राग नूं साधारण श्रोते भी बड़ी सौखी तरह पहचान लैंदे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच तिलंग राग दे सिरलेख हेठ दो राग प्रकार उपलब्ध हन। बाबर बाणी जिस विच पाप दी जंग, जोरी मंगे दान, रत का कुंगू, अगत पड़े शैतान आदि शब्द हन जो भयानक दृश्य बनाते हैं, पर प्यारे का रायसा होने करके परमेश्वर की लीला समझ जग्यासु भाने विच टिकदा है। इस राग के स्वरूप विच दोनों निषाद रिश्वत दैवत वर्जित अते होर शुद्ध स्वर लगते हैं। वादी गंधार संवादी निषाद इस नूं दिन के तीजे पहर गाया जाता है। दिन के तीजे पहर गाउण की परंपरा श्री हरिमंदर साहब जी जो कीर्तन का सोमा है दी पुरातन परंपरा है। इस राग का पहला शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं बीबी जसविंदर कौर जी, रचना है श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी, और शब्द की तुक है मीरा दाना दिल सोच, मुहब्बत मन तन बसे सच साह बंदी मोच। दूजे शब्द का कीर्तन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी, है तू हो वनहार, अगम आगाध ऊंच आभार। पहला शब्द श्रवण करो, मीरा दाना दिल सोच।

कोट पैंडा आगे हुए लेत हैं। यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, वाहिगुरु परमात्मा। टेक वन स्टेप टूवर्ड्स हिम एंड ही टेक्स अ मिलियन स्टेप्स टूवर्ड्स यू। यू डू सेवा इन हिज नेम, डू चैरिटी इन हिज नेम एंड ही रिवॉर्ड्स यू 1,000-fold. You repeat his name again and again, and he will always be with you. Nanak, Bhagat Ravidas says, I repeat his name again and again, and I never get tired of repeating his name. Satgur Dayanid, Mehma Agad Bodh, Namo, Namo, Namo, Namo, Neth, Neth, Neth hai.

परमेश्वर कहायो पट अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करदे आ लिखदे ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लेके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरुदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलाधार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पटा ने इस तरह की थी। सब तो

कोई सौखी चीज मिल जाए कोई घालना ना घालनी पवे इस तरह ने ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नो मिलनी पर मिली भी कालना करके गुरु अमरदास हर साल गंगा नहान जाया करते सन हरिद्वार कई साल जाते रहे और एक दिन

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

सदा तेरी आस सबको आस है तेरी बेटा। हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किस लिए? क्योंकि आप सब दियां आसां पूरियां कर दे हो। जेड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी होवे, ते जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, ए गल वखरी है, आस भी कई प्रकार दी है। एक गल दा ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा आ

मैं बड़ी आस करके हे मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगिया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगिया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्षी गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवे दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते हर किसी की आस पूरी हुंदी है। हां यह गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड़ के ही चला गया। इत्थे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ए ना सोच के पूरी नहीं होई जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउनी है,

आस इथे सब वखो वखरी ला के आंदे ने। कोई धन की आस करदा, कोई पुत्र की आस करदा, कोई धी की आस करदा, कोई मकान की आस करदा, कोई कार की आस लैके आंदा, कोई कहिंदा मैनू मान इज्जत प्राप्त होवे, कोई कहिंदा है कि मेरे घर सुख होवे। ते हे मेरे मालिक, कई ऐसे भी ने जिहड़े केवल तेरे दर्शनां की आस लैके आ, कई ऐसे ने जिहड़े तेरे दर तो नाम की जाचना करन आउंदे ने, अज उहनां दी भी आस कबूल हुंदी है। कहिंदे ने मैं बड़ी दूरों चल के आया मालक, तेरे दर ते आस ला के बैठा, आस हुण केड़ी है, मेरा सबो दुख गवाएगी। साहिब कहिंदे ने भाई इह शरीर दा दुख ते कोई दुख नहीं, अगर कोई दुख है ते जम्मण ते मरण दा सब तो वड्डा दुख ही है, जमन ते मरण दा। हे मेरे मालक, मैं आया तेरे दर ते आस ला के, मेरा ये दुख मिटा दे। ते ए दुख कदों मिटदा है, ख्याल करना। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाए, दर्शन पर से है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाए, दर्शन पर से है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। जिना गुरु दे आके दर्शन पा लेंदा है ना, उदे जन्म ते मरण दा गेड़ मुक जांदा है। कहिंदे ने कैसी आस है, बहुत जन्म बिछड़े थे मां दो, इह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिर भयो दर्शन देखे। भगत रविदास जी कहिंदे ने मैं ते इसे आस ते जीउण डिया, तेरे दर्शन देखने ने भावे चिर बाद ही हो, दर्शन तेरे जरूर करने ने। भाई ये ते ताई हो सकदा है, मन नू ऐसा निश्चय यकीन विश्वास हो जाए, वो भी तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते, कि हे मेरे मालिक मैं तेरे दर्शन करना आया। ते भगत जी कहिंदे ने कहो रविदास परो तेरी सांभा, भेग मिलो जन करना बिलांबा। हे मेरे मालिक, जड़ तक तेथों दूर सा, मैं देरी भी बर्दाश्त कीती है ते दूरी भी बर्दाश्त कीती, पर हुण तेरी शरण विच आ गया, हुण ना ते देरी बर्दाश्त हुंदी है ते ना दूरी, क्योंकि दूरी मिट गई है, फिर देरी क्यों। भेग मिलो मैनू जल्दी मिल, जन करना बिलंबा, बिलंबा कहिंदे ने थोड़ी जी भी देर ना ला, ढिल ना ला, टाइम ना ला, मैनू जल्दी मिल। इसलिए साध संगत आओ, ये अमृत वेला भागा वालियां नू नसीब हुंदा है, बहुत कर्मा वालियां नू। ख्याल करिया करो, गुरसिख दे वास्ते गुरु दियां हर वक्त बाहां फैलियां होईयां ने, आवाज देंदे ने आए मिल गुरसिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। ओए आ भाई आ, मैं ते तेरी उड़ीक विच हां, मैं तेरी इंतजार पिया करना, ते तू अजे सुता ही नहीं उठया। जे तू सुता नहीं उठया ते पाठ कदों करेगा, जे पाठ नहीं कीता ते गुरु घर कदों आवेगा, ते जे गुरु घर नहीं आया ते उस मालक नाल कदों जुड़ेगा, कदों दे नाल तेरी प्रीत लगेगी। आवो सिख सत गुरु के प्यारे, हो गावो सची बाणी। आओ भाई ए बाणी गुरसिख वास्ते है, ते गुरसिख ने सुननी है, ते आपा ए दो चीजा जरूर प्राप्त करिए, अमृत ते अमृत वेला। क्योंकि जड़ तक सिख पंथ अंदर ए दो चीजा रही ने, चढ़दी कला विच रहे है, जदों ए दोवें खुश गईयां ये टेंदी कला विच तुरना शुरू हो गया। साडे कोल ये वस्त खुश गई है, ठीक है, असीं इन्हां मुल्कां विच आ ते गए हैं, इत्थे आ के असीं बड़ा कुछ गवाया है, पाया कुछ भी नहीं। मैं नहीं कहिंदा, जिन्हों भी वेख लो तुसीं मिल के, वह कहिंदा रहण नूं मन नहीं करदा, मजबूरन रह रहे हैं। भाई जे कोई मजबूरी है तो चलो गुरु नाल ही मिल लो, गुरु घर ही आ जाओ, जिथे आके कुछ देर ते मन नूं सकून चैन आराम मिले।
ऐसी गल नहीं है। इत्थे रह के भी असी बड़ा कुछ गुरु को प्राप्त कर सकते हाँ। आओ ये दो चीजा जरूर हासिल करो, अमृत ते अमृत वेला, क्योंकि जिहदे कोल अमृत ही अमृत वेला है उहदे कोल सब कुछ है, ते जिहदे कोल दोवें चीजा खुस गईआं उहदे कोल कुछ भी नहीं है, वह खाली है। सतगुरु बख्शिश करे, सतगुरु रहमत करे। अज अमृत वेले तो तुसा सतगुरु दे दर ते हाजरियां भर के संपूर्ण श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन। आसा दी वार दा कीर्तन ओ है, धन गुरु नानक पातशाह दा हुक्म है, जिहड़ा मन करके करे ते मन करके सुने उहदियां आसां पूरियां हो जांदियां। ते असीं जिन्ने भी बैठे हां आस ला के बैठे हां, सब को आसे तेरी बैठा, सारी सृष्टि तेरी आस ते जीवत है। कोई है ऐसा जिन्हों मालिक तेरी आस ना होवे? हर कोई तेरी आस ला के बैंदा है। आपां अरदास करिए सतगुरु साडियां आसां पूरियां करन, अपने दर ते हाजरी लाउंदे होए। आओ प्यार शब्दा सहित सारे मिलके रसना नूं पवित्र करो, एक दो मिनट आपां सिमरन विच भी लाइए।

0: ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे
1: नहीं
0: नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा जी रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी की विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा करान जिथे जाना चाहते हैं। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले माई दे पे थे। आज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह हुण ते कौले मान जान। बाबा जी कौले माई दे पे, कोला हाथ चे, नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला, नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला। इनी क लिव लग के कोला मायदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नो 10 मिनट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी दे, जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने, कहिंदे कौला हाथ विच ही है, सवाह नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवाह दे, डंडौत करके मालक नूं कहिंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा। कहिंदे दीप सिंह कोले माई दा ते बाबा जी तुहाडी कृपा नाल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल ते तन गुरु गोबिंद सिंह कहते अज दीप सिंह एक गल